अर्घ्यथाली समय वर्तमान सकाळ 6:35 मिनिट शेषरे गोटिए कथा कहिहब बंधु जीवनरे कष्ट आसिब परीक्षा आसिब किंतु मन भितरे भक्ति थिले मनीष केबे भांगी पड़ेनि प्रभु जगन्नाथ आमको सिखान्ति धैर्य रख भल कर एवं भरोसा केबे भी हार नाही निज उपरे जेउठी भी थांतो ना काहे कि आपण माने जेमिति अवस्थारे भी थांतो ना काहे कि केवल थरे भक्तिर सह कुहंतु हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ देखिबे मन बहुत हल्का हेजिव एवं मन भितरे एक असीम शक्ति आसीजिव तेबे भक्तिर ई सुंदर यात्रा रे आजि पई एतिके प्रभु जगन्नाथंकर अपार कृपा समस्तंक उपरे एमिति रहिताउ आपणंक घरे सुख शांति समृद्धि सबुबले रहिथाउ एतिकि ही कामना तेबे आज सकाळरे आपण माने शुणिछन्ति आपणंक साथी स्मृतिको भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळीकु शेष करिबा ई सुंदर भक्ति गीतरो

ट्यून करिछन्ती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 6:40 आरंभ करुछु।

0: ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଫଳ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच

0: शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनुथिले आपण माने हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करिलो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र रो।

मैं मो नारायण तुम्हें ही मोर प्रभु तुम्हारी दयारे ए जीवन बीती जाऊ पुराण आउ इतिहास रे अनेक उदाहरण रही भक्त प्रहल्लाद भक्ति पाई भगवान नृसिंह अवतार नहीं द्रौपदी आह्वान से श्रीकृष्ण लज्जा रक्षा करथिले एसबु प्रमाण करे जे भगवान केवल मंदिर रे नुहे से भक्त हृदय रे बास करती जोठी भक्त सेठी भगवान जोठी भक्ति सेठी ही से प्रभु

हे ईश्वर तुमे विश्वर तुमे ही करुणार सिंधु तुमे ही मोर प्रभु प्रभु का नाम नहीं प्रत्येक मुहूर्त अति पवित्र हो जाए से ही परि भक्त आ भगवान संपर्क मध्य अत्यंत पवित्र भक्तर आस्था ही भगवान को तंका पाख को आनी थाए तेणु आम सब बड़े सत्य भक्ति मानवतार पथरे चलिबा उचित जो पथरे चलिले एवं ईश्वरंक प्रति भक्ति रखिले भगवानंकर कृपा निश्चय मिले।

श्रोता बन्धु, ए पर्यन्त आपण माने सुनुथिले आमर भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाळी। एठे शेष करिबा आमर अर्घ्य थाळी कार्यक्रम को। आमर परवर्ती कार्यक्रम आपण मानक पई वर्तमान रहिछि। आमर परवर्ती कार्यक्रम आपण मानक पई रहिछि अति बड़ी श्री जगन्नाथ दासंक विरचित श्रीमद् भागवतर।

0: आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों

0: শ্রোতা বন্ধু, আজির শুভ সকাল কার্যক্রম এইটি শেষ করা। সকাল আটটায় শুনিপার আপনার হিন্দি সংবাদ এবং তাপরে শুনিপার ইংরাজী সংবাদ রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র। তেমন বর্তমান আসুন শুনবা হিন্দি সংবাদ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति

0: दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में द कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी।

0: इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश माघो। द हेडलाइंस, सेंटर आस्क्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू बिल्ड 30 डेज LPG रिजर्व्स एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज मेजर गेन्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian

0: हेलो
1: पापा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, के कहुतले?
1: आवासन कोची टाटा स्टील प्लांट।
0: अच्छा, केमती अछंदी?
1: पूरा बिंदास, एबे त ड्यूटी अछि, ऑफिस अछि।
0: अच्छा, कोन कहिबे आजर टॉपिक उपरे?
1: हम जो ट्रेन यात्रा करू तो बढ़िया विषय वस्तु आमे मु फास्ट जाइथिलि मोर काकी करू मानथिलि चेन्नई सेंटर।
0: अच्छा,
1: अपांग सहित ना पीसा सहित उपस्थित न ट्रेन बसिकि चेन्नई सेंटर जाइथिलु। चेन्नई सेंटर लोकल स्टेशन आमे जाइथिलु मांडापल्ली, चेन्नई सिटी मांडापल्ली, गाँव का नाम मांडापल्ली। सेठी मु मासे गाँव में रहती फुल ट्रेन कटक ओडिशा आसती।
0: बहुत ही सुंदर ट्रेन जर्नी रो स्मृति आपण शेयर करले, थैंक यू सो मच कॉल करथिवारो, रहिले, नमस्कार।
1: थैंक यू अपार, नमस्कार।
0: श्रोता बंधु, आपण को फर्स्ट ट्रेन जर्नी रे जदि किछ स्मृति अछि आज मो सहित शेयर करंतु, नंबर टी त आपण जानि छथि, आ गोटे कॉल आसी छि, कॉल डी नै जिवा। हेलो, हेलो,
2: बोल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ, की कहथले?
2: राजेश नायक फ्रॉम चर्चिका बाजार जगत सिंहपुर।
0: केमती अछंती?
2: फुल बिंदास अच्छी, फुल बोबाल अच्छी, आपण भी फुल बोबाल थला भलिया जणा पडछंती।
0: हो मु एठी की रेडियो को असला माने पूरा फुल बोबाल हे की आसे, काहे ना मन जदी मोर दुख रहइबो ताले आपण मान को केमती खुशी करबी, मते कहन तो केमती
2: पाग आउटे वार्ता अच्छी। आज होची विश्व तमाकू दिवस। आ विश्व तमाकू दिवस रे मोर कहिवार मतलब स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, अल्कोहल ड्रिंकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, तेणु निशा सेवन करंतुनी, कैंसर रोग रे आक्रांत हुवनी कि अजथारे जीवन टा न जाऊ। एमती आमर गोटे कथा नहीं, पान बीड़ी नुहे, छोटिया निशा जना पड़े नहीं टाणे पैसा, तेणु निशा ठारु समस्त दूरे रहिबा भलो बोली भाबुछि।
0: अच्छा, आपण कहंतु आजर टॉपिक उपर कोन कहबे कहंतु?
2: मु तो ट्रेन जर्नी चार पांच थर जीवन रे करिछि, आ थे जा खड़गपुर जा कलिकता साइड, आउ दु तीन थर कमर जयपुर जगत सिंहपुर भुवनेश्वर मुझ ट्यूलेक कंप्यूटर करी सहीद नगर सात आठ थर खंड उठी जाइर मुझे भुवनेश्वर रु राउरकेला, तेणु ट्रेन जर्निंग चार पांच थर कर प्राय डिलक्स लग्जरी बस रे बेसी जर्निंग करे।
0: अच्छा, तो फर्स्ट ट्रेन जर्नी रे किछि आपनकर स्मृति अछि?
2: स्मृति अछि कोन, टिके डर लागे, एते बड़ साउंड करथबो जीवा आसिया, माने ट्रेन भी टिके जदि न रहइबो आपण चढ़ी जीवे गली पड़िए, जदि अजथारे जीवन भी चली जीवो, तेणु भारी डर टिके लागुथिला फास्ट फास्ट। चारि पांच थर तो मुझे जर्निंग कर बेसी तो जर्निंग करनी, तेणु जो मैंने अधिका जर्निंग करते एक्सपीरियंस अधिका थी।
0: थैंक यू सो मच आपण कॉल कले, आपणकर ट्रेन जर्नी मो सहित शेयर कले, किंतु वर्ल्ड नो टबाको डे आज नुहे, आसंता काली आमे सेलिब्रेट करिबा। आपण गोटे बहुत सुंदर मेसेज देइछंती, सेतिपई बहुत धन्यवाद।
2: माने मु त आज त गोटे टेलीविजन चैनल से डॉक्टर आसिले, तांका सहित भी ए विषय रे कथा होतली, मु भाबिले आज आपणका न्यूज।

ओके ठीक अच्छे किसी भूल भाल तथ्य हो बहुत हुए किसी कथा ना आसंता का आम सेलिब्रेट करने पालन करने को जाऊे वर्ल्ड नो टोबाको डे तो आम आसंता का विषय में कथ हवा एनिवे थैंक यू सो मच आप गोटे बहुत भल मेसेज दे जय जगन्नाथ नमस्कार श्रोता बंधु आपण भी कल करंतु आ शेयर करंतु आपणको फर्स्ट ट्रेन जर्नी रे किछि स्मृति आ गोटे बढ़िया गीत वर्तमान आपणको पई स्टे ट्यून्ड।

0: 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो दिल से दिल तक रे मुकोयल आपण मानका साथी अछि आ आज फोन इन कार्यक्रम रे डायल इन लाइव रे आमे कथा होजे आपणकर फर्स्ट ट्रेन जर्नी रे किछि सुंदर सुंदर स्मृति आपण माने मो सहित शेयर करछन्ती देखिबा वर्तमान की मोर बंधु अछन्ती फोन लाइन रे हेलो फोन टी कटि जाइछि किछि कथा नै आपण माने मते कॉल करि परिबे 0671203035 नंबर रे गोटे कॉल भी आछि छि कॉल टी नै जिबा हेलो हेलो
1: हेलो वसकाल मा सारंग का सुत्र सह परिवार भले तंत कोइल मैम
0: नमस्कार टुना भाईना केति अछन्ती
1: आपण का भल पाबा सारंग का सुत्र बहुत भल रहछि आसार मा सारा निश्चिंत आपण भल रहछि
0: केमिति अछन्ती आ कोन ट्रेन जर्नी रे फर्स्ट स्मृति अछि आपण कर शेयर करंतु
1: देखंतु प्रथम ते जानी करतली मते सब सिखतली म दिल्ली जाउतली दिल्ली गला को ट्रेन कर मते सब कहितले ते का जिंस किति खायु नाय जे देले निसा फिसा दे तेले वो डरी डरी कि आइ रिजो सर टिकट कटाई दला तारे तीन तीन छ जण हम बसिलु ओडिया सब जाते खाद्य खाइले घर टीफिन भी ना सीट ट्रेन ने
0: दिखती
1: से जाती मना कल मुझे ये कल झटा आसी ठाक आड़ लटाई कप कप गई खाई ट्रेन मान बाहर को जाती बाहर आसिक आउट बगि बस मानते मो नंबर सीट चेंज कर सीट मत बहुत मुझे मो सीट से बहुत जुक्त मुझे लास्ट जान ली ना मोर से अपदस्त होती प्रथम प्रथम जा सब बहुत अपदस्त होगी मजा लगे सब बारंदा बाला चा बाला चाय चाय चाय कपी कपी बना के बहुत मजा लगला मैंने बहुत खुशी लगला ट्रेन प्रति झरका बाटे सब स्टेशन आड़ा सब देखता है मन रखता है मन ना सी तीस वर्ष घटना
0: बयस अच्छा बहुत ही बढ़िया सुंदर स्मृति शेयर कले आप मो सहित स्मृति शेयर करते हस फुटी जा मान के सुंदर से स्मृति हृदय तीस वर्ष है आज पर्यत साहित्य रही बहुत बहुत धन्यवाद शेयर कर रही नमस्कार हेलो श्रोता बंधु आपण मानक पाई भी लाइन खुला अच्छी यार फोन लाइन जल्दी कॉल करते 0671203035 नंबर आउ गोटे भी कॉल आई कॉल टी नहीं जीवा हेलो
2: हेलो
0: हाँ नमस्कार गुड मॉर्निंग की कोथले
2: संतोष मल्लिक कहू जी मैं कपड़ा भरतपुर जिला जाजपुर
0: अच्छा केमती अछंती
2: बहुत बढ़िया
0: कौन कहबे आपण को फर्स्ट ट्रेन जर्नी रे किछि स्मृति अछि आपणकर फर्स्ट ट्रेन जर्नी रे किछि स्मृति अछि आज शेयर करिवे
2: त केबे त ट्रेन रे जाइनी
0: जाइ न आंदी
2: एंती होते एबे सब एंती स्टेशन सब जे बुलिया गु जाइ छी
0: अच्छा
2: धानमंडल स्टेशन हैला भुवनेश्वर हैला लागि एंती सब बुलिया गु जाइ छी केबे ट्रेन रे बसिनी मिथ्या कथा कहले कोनटा हो
0: अच्छा ठीक अच्छे जब भी अपन ट्रेन में बस ना नेक्स्ट टाइम जब भी हमें विषय कथा हवा आप निश्चय फोन करेंगे और शेयर करेंगे आप कॉल कर बहुत बहुत धन्यवाद रही नमस्कार

0: थैंक यू सो मच आपण गीत सुनिक मते बहुत भल लागला के कहथले
1: प्रशांत कहथली राजन कटक
0: प्रशांत बाबू केमती अछंती
1: बहुत भल अछि मैम आपण भी बहुत एनर्जीफुल लागछंती
0: मु तो पूरा एनर्जेटिक अच्छी अच्छा कहतु आपर फर्स्ट ट्रेन जर्नी रिच्छ स्मृति
1: कहबी सी तो ट्रेन जर्नी रो पाखे गंता घर कहले अत्युक्ति आप सकाल जो शुभ सकाल जो भोग थाली जो सुंदर सुंदर भजन सहित एनर्जीफुल कर बहुत खुशी मैम
0: जा हाउ आपण सकाळ गोटे भल आरंभ होगा से मत बहुत खुशी लगे शुणी
1: कह ट्रेन जानी दिन ट्रेन मो घर थी कहले अत्युक्ति हमी
0: माने
1: 95 रु 2001 मसीहा पर्यंत ट्रेन रे ही सब बेले रहतली आ पूरी खास करके पूरी
0: ट्रेन रे काई कि रहतले ट्रेन रे जॉब करतले
1: कैटरिंग डिपार्टमेंट थिला बग्गी ता भीतर
0: अच्छा अच्छा अच्छा इंती कथा ताले ना
1: पूरी आ सिटी भीतर दूरता प्रति माने 48 घंटा रे पूरी पूरी 48 घंटा रे नवा दिल्ली
0: बढ़िया कथा तो
1: गोटे स्मृति अच्छी बहुत मान दुखद स्मृति 95 96 मसीहा रे तिरदगा ट्रेन दुर्घटना रे मु से ट्रेन बगी रे थिली
0: बाप रे ताहले किछि
1: दुखद विषय मैम ट्रेन रे जदि मो आग बगी लाइन ऊपर अधा आ लाइन रे तले आगु को सब जायतिला आ हम बगी ती लाइन रे छिड़ाइतिला आपर पुणी ऊपर जो इलेक्ट्रिक रो पावर तार छिंदी से दुखद विषय मैम बहुत मर्मांतक जाऊ रखे हरी मारे किए मारे हरी रखे किए बहुत सुंदर आ पूरी नुआ दिल्ली रा दूरता मत एते थिला जे कानपुर रेलवे स्टेशन रो पूरा एमती गोटे ट्रेन आम पूरी रु जाए नुआ दिल्ली पाई का जे 6 घंटार सफर तय कला पर कानपुर जाए नुआ दिल्ली पहुंचे आ मझे बहुत बड़ बड़ स्टेशन अच्छे किन्तु कोठी तार रहनी नहीं
0: अच्छा ताहले गोटे बहुत ही बढ़िया
1: माने पूरा कानपुर छाड़ियो माने रात 10:30 पूरा रात 4 नहीं कि नुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन लगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन SIR कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपाई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु BLO को निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ECI नेट आप रे बुक ए कॉल विथ BLO सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहन्तु।
2: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाळ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांती लागिबा, प्रबल सोसो लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
1: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळे किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहर को जांतु, बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु, हालुका रंगर ढिला पोशाक छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु, खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मछिरे मछिरे छाईरे विश्राम नियंतु।
2: अंशुघातर प्रतिकार गुड़िक हेउछि रोगी को खोला ओ ठंडा जगह को नेई ORS किंबा चीनी लुण सर्बत अथवा साधा पानी पियंतु, पोशाक गुड़िक जथा संभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु, रोगी को पंखा कूलर किंबा AC पवन रे सुवाई दियंतु, अवस्था रे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
1: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
2: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन SIR कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाय प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहा को BLMक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ECI नेट आप रे बुक ए कॉल विथ BLO सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।
2: केबे संगीत त केबे स्वर, केबे कथा त केबे नथा, अनेक कथा अनेक गीत और ढेर सारा गपर प्रसार धरी मु आसीगली पुणी थरे आपनकर साथी बंधु जय दे। कुआड़ी जानतुनि हृदय को हृदय लगे रुहंतु आम सहित आ सुनु थंतु किछि कथा किछि गीत। सो स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी FM रन बकड़क दिल से।

हाँ बंधु, वन्यप्राणी को विश्राम और प्रजनन पाई पानी और निरापद स्थान आवश्यकता होई थाए। एक सरल अगभीर पक्षी स्नान किंबा छोट बुड़ी रही पोखरी पक्षी कीटपतंग उभयचर प्राणी मानको आकर्षित करे। पुराणा डाळ पची जाइथिबा काठकदा करिबा द्वारा पोक मांकड़ शीत ऋतुरे रहिथिबा उभयचर प्राणीको पई एक आदर्श आश्रय स्थल सृष्टि हुए। फंपा स्थान रखिले महुमाछी बसा करिबार सुजोग पाइथंती। कंपोस्ट गदा द्वारा कीटपतंग जिया आदिकर बासस्थान मिल जाए। कौन आपण भावुछंती? आपण भावुथिबे आम बगीचा को एमती अपरिष्कार काहेकि करिबा? बंधु, ये अपरिष्कार नुहे, ए हौछि प्राकृतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश ही आमको गोटे सुंदर पृथ्वी दे थाए। से परिवेश को आमे नष्ट करुचे, आमे ताको भांगीचे, आमे प्रकृति को खिनभिन करिचे, आमे से क्षतिपूरण करिबाको पड़िबो। आउ से प्राकृतिक परिवेश टे तयारी करिबाको पड़िबो आम बगीचा रे, आम बाड़ी रे। तेबे जाइ आमे फेरि पाइबा से प्रकृतिर से मूल्यवान उपकार को। प्राकृतिक परिवेश ही आमको गोटे सुंदर पृथ्वी दे थाए। आउ से पृथ्वी आम जीवन धारण को सहज आउ सरल करि थाए। तेणु एक सुख शांति सुंदर मधुर जीवन जापन पाई प्राकृतिक परिवेश लोड़ा, नुआ पृथ्वी लोड़ा। से नुआ पृथ्वी ही हम आम बगीचारे, केवल आम बगीचारे ही आम करिपारिबा से नुआ पृथ्वी को।

0: सुनसुनी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय दिन गोटे बजे जाऊँगी किसी समय पर शुणी पारे हिंदी में संवाद पर इंग्राजी में संवाद रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री दिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जयदेव सही तो म्यूजिकल डे को एंजॉय करिया पई रहछि ढेर सारा गपशप गपशप आपण के सहित गपशप माने आपण के सहित चर्चा करबा आपण के मन रे कथा आपण के मन रे भावना आपण के चिंता चेतना हम सहित शेयर करबे आपण आउ ताको नै करबा चर्चा ताको नै करबा गपशप। तो आज आपण मान पई रहछि टॉपिक आज चर्चा रे आलू आम खातिर केते जरूरी आरंभ करिबा कार्यक्रम आज चर्चा रे। आज चर्चा रे आपण को पई आज रो विषय वस्तु आलू आम खाद्य रे केते जरूरी आपण को मत आम सहित शेयर करिया पई मोबाइल रे टाइप करंतु FMRC स्पेस दियंतु निज ना लिखंतु ठिकाना लिखंतु आ आपण को मतामत लिखि आम निकट को पठाई दियंतु। आम नंबर हला 09495963210 आपण मते चाहिले व्हाट्सएप रे हमको मेसेज करि परे व्हाट्सएप रे हम नंबर हला 8895254200 आउ थरे करि छी व्हाट्सएप नंबर टी 8895254200 फटाफट पठाइ दंतु आपणकर मतामत आउ सुनु थंतु 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कडक दिल से दिल तक।

0: second T20 International of three-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता

0: मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती है। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास

0: को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमे नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दो

0: पहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारिबे एही विज्ञापन परे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन SIR कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपाई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु BLMक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ECI नेट आप रे बुके कॉल विथ BLO सुविधार उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहित रे जारी।
2: दिल से दिल तक समय चलो सुनवा ओडिया कथा चित्र गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारीख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठरे फैसला करा जिवो। यहार सविशेष विवरणी पई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 1510 रे जोगाजोग करंतु।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आमको सुनुथबा प्रत्येक श्रोता बंधु को गुड आफ्टरनून स्टूडियो घंटे समय अपराह 4:00 बजे 2 मिनिट आउ 44 सेकंड अपराह 4:00 बाजी सारिलानी माने समय हे गेलानी साथी आपनको आफ्टरनून को आउ टिके सुरिला आउ टिके रिफ्रेशिंग करिवारो रेनबो अगणारे मुँ आसी पहुँची सारी छी आपनको रेनबो साथी शुभश्री आउ आरंभ करिबा शो सुरिला आफ्टरनून आफ्टरनून को टिके कूल करबा को आपन को माइंड को टिके फ्री करबा को किछ मीठा मीठा गीत पहुंचो छी आपन को पखरे किंतु गीत पहुंचबा परवर साथी जणे दो छी बड़ मानन को नमस्कार आ सान मानन को ढेर सारा प्यार ट्यून कइ छन दी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक फ्रीक्वेंसी जहारो 100.4

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बने? क्या आपने कभी ऐसा बॉस के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा दबाव में होने के बावजूद शांत और सकारात्मक रहता हो? शायद आपने ऐसे सहकर्मी के आदर्श माने हो जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करता हो। अब विचार करें कि दूसरे आपके व्यवहार को किस तरह देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं? आपको शायद उसका एहसास न हो, लेकिन आपके कार्य, दृष्टिकोण, नजरिया और नैतिकता संभव आपके टीम के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आज के इस लम्हे प्रोग्राम में हम एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लाभों पर चर्चा करेंगे तथा ये भी कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल क्या है, होता कौन है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके विकास करते हैं। विशेष रूप से बंडूरे ने पाया कि व्यवहार नीचे की ओर बहता है। दूसरे शब्दों में एक समूह अपने नेताओं से संकेत लेता है। इसीलिए यदि आप ईमानदारी और खुलेपन जैसे मजबूत गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने टीम के सदस्यों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो लीडर बुरे व्यवहार का अभ्यास करते हैं या उसे पुरस्कृत करते हैं, वे ऐसे संस्कृति विकसित करने की संभावना रखते जिससे व्यक्ति टीम के हितों से पहले अपने हितों का प्राथमिकता देता है। अपनी टीम के लिए आदर्श बने मेरे दोस्तों। अच्छे रोल मॉडल का अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। संगठन ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसीलिए अच्छे रोल मॉडल को पदोन्नति के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। उन्हें संगठन में गठबंधन बनाना भी आसान लगता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड मजबूत होती है। यदि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए कदम उठाते हैं, आप संभवतः एक अधिक प्रभावी टीम और व्यवसाय बना पाएंगे और आप अपने करियर को भी बढ़ावा देंगे। अच्छे रोल मॉडल आमतौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मकता, विनम्रता, सहानुभूति, व्यवसायिकता और ईमानदारी। आइए इनके बारे में अधिक विस्तार से जानें आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आत्म जागरूकता, क्या आप जानते हैं कि आप कार्यस्थल पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाकर इसका पता लगा सकते हैं। ये आपके व्यवहार और दूसरों पर आपके प्रभाव पर ईमानदारी और उत्पादकता से विचार करने की क्षमता है। एक बार जब आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप आत्मनियंत्रता और आत्मनियम भी विकसित कर सकते हैं और इस तरह से अपनी भावनाओं और भलाइयों का प्रबंधित करके आप जो करते हैं और जिस तरह से करते हैं उसे अपने मूल्य के साथ संरेखित करने की क्षमता रखेंगे तो आप खुद के प्रति अधिक सच्चे होंगे और दूसरों को अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। बदले में आपके संभवतः सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। नकारात्मक लोग उन लोगों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें उनके साथ काम करना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऊर्जावान काम करने वाली टीम भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप मुश्किल परिस्थितियों में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम किसी भी स्थिति में क्या कर सकती है, न कि इस बात पर कि वो क्या नहीं कर सकती है, और उन सफलताओं पर निर्माण करने में उनकी मदद करें। अच्छे रोल मॉडल विनम्रता का अभ्यास करता है। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या करना है तो वे ईमानदार होता है, सवाल पूछने और सीखने में खुश होता है। वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है। वह जहाँ भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे नहीं छिपता। सहानुभूति ने अपने लोगों की भावनात्मक जागृति को समझना शामिल है।

ध्यानपूर्वक सुनने का उपयोग करके सहानुभूति विकसित कर सकते हैं, ताकि आप वास्तव में सुन सके और समझ सके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। जितना अधिक आप इस तरह से टीम के सदस्यों की पहचान करने और उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक विश्वास आप बन पाएंगे और वे संबंध उतना ही मजबूत होगा। व्यवसायिकता का प्रदर्शन करने का मतलब है अपने कार्यों और अपने काम को एक उत्कृष्ट मानक पर रखना। इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना, तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने की वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपनी और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आंकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है, तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। With this very good information, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye, my dear friends. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. spice.lamhe.vanilla. This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

0: हेलो,
1: जय जगन्नाथ, नमस्कार।
0: जय जगन्नाथ, नमस्कार। किए कहते कल
1: रेडियो लाभर नारायण प्रधान ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम।
0: नारायण भाई, बहुत बहुत स्वागत आज डालिन लाइव चिटचाट को। केमती अछंती प्रथमे कोंतु?
1: बहुत बढ़िया अछि। मो तो आइसक्रीम व्यापार चलछ अभिया।
0: आज्ञा,
1: भलो अछि। आपण केम देखिन के
0: जा हो? आपण आम मानको बंचिवार राहा देखौ छंती ए गरम। बहुत बहुत धन्यवाद सेति पई। अच्छा ताले कोंतु आज रो टॉपिक उपर कोन कहिबे?
1: देखंतु वर्तमान तो एआई युग जमाना।
0: अच्छा,
1: आमे जे कौन सी कार्य करते आमे एआई की आमे प्रथमे ताको व्यवहार करछंती।
0: अच्छा,
1: ए फोटो हो किमा कौन सी कार्य

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: नमस्कार। सुबह अपराह्न किए कहते कौट कल करते
1: मुझे बेलपड़
0: स्वागत कर डायलिन लाइव चिटचाट को आज टॉपिक रे कौन कहे
1: जो काम आगु निजे करिपेड कर सब कम
0: एआई को यूज करती
1: आज्ञा निश्चित कहीं आम जब सब डिपेंड करवाजे
0: तो एआई को यूज करने कथा नुहे कहीं डेली लाइफ यूज कर
1: मु तो कहि माने यूज कर अत्यधिक नुहे माने सब जिन माने अधिक व्यवहार करने द्वारा खराब भी हुए भल भी हुए तो आम जब मोबाइल मोबाइल जी व्यवहार करने कथा अधिक व्यवहार करवा तो सही खराब से जिते बने जो कम निजे जानूचे करानी तो से आई रेल्प नवा सब ना पूरा अभ्यस्त हो
0: बहुत ही भल लगे आपण मतामत टी जा हो आप सहित कनेक्ट हो निजर मतामत सेयार करे से बहुत बहुत धन्यवाद रही
1: धन्यवाद दीदी रही नमस्कार
0: नमस्कार। जेमती आम साथी कहते जे अधिक उपयोग बेले बेले हानिकारक हुए तो से एआई रो उपयोग जदि आम बेस भी करवा जमती मोबाइल उपयोग कले आमर आखि ऊपर टिके कुप्रभाव पड़े सेमती जदि एआई आम डेली प्रति क्षेत्र रे यूज करवा टिके टिके कथा रे जदि यूज करवा ता साहाज्य सहायता जदि नबा ताले सेटा भी खतरा खराब तो देखि नबा चलंतु नेक्स्ट कॉलर तांकर कोन मतामत रखुचंती। हेलो
2: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार सुबह अपराह्न किए कहते कौट कल करते हेलो हेलो शुण पार साथी बोध हुए आज टिके नेटवर्क इश्यू रोचे से कते गुड़े कॉलर आम सहित कनेक्ट हाँ चेस्टा कर।

0: हेलो।
1: कौन? नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ। की कोथले कोट कॉल करथले?
1: मुको उसले राजेश नायक टट्टिका बाजार जगतसिंहपुर।
0: स्वागत करछि आजर डायलिन लाइव चिटचट को। आपन को मो आवाज मो वॉइस टी क्लियर सुबुछि?
1: पूरा क्लियर सुबुछि, मो कथा भी मते क्लियर सुबुछि।
0: आज्ञा, ताले कोंतु आजर टॉपिक उपरे आपन को कोन मतामत रहबो?
1: मो गोटे रे आपन को प्रोग्राम सुनि छि, गोटे मोबाइल रे डायल करछि।
0: आज्ञा, कोंतु आजर टॉपिक रे आपन कोन कहिबे?
1: आपन जो क्वेश्चन ता पछैछन्दि, बहुत शानदार क्वेश्चन टा पचारछन्दि।
0: आज्ञा,
1: आपण जो एआई जमाना कथा कहउछन्दि, एआई माने मीन्स होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: आज्ञा,
1: तेणु आपण जो जिनिसटा आमर कृत्रिम पवन आउ प्राकृतिक पवन भितरे आकाश पाताल फरक अछि। आज एग्जाम्पल आपण देखन्तु, फ्यान बुलिबा एसी जे लगातार चलैबे तले रोगग्रस्त हेबे। आ जो यदि आपणकर किछि प्राकृतिक जिनिस प्राकृतिक पवन खाइबे बाहर बसि सुलसुलिया बा बहुथिब ता मजा किसी नियारा। तेणु ये जो जिनस कंप्यूटर जुगे रे एआई जमाना रे बर्तमान तो विज्ञान कुआडे आगे ताबेली नुह जे आमे सब काम को आमे कंप्यूटर उपर छाड़ दबा, रोबोट उपर छाड़ दबा, एआई उपर छाड़ दबा, सेटा के बे भी ठीक नुह। तेणु बर्तमान जुगे रे एते सुस्तिया लोक हो गले ऑनलाइन मगेकि खाउछन्ती, घर रोसेवास भी करूना,
0: तीर
1: चकी रे भी बाटूना, सब मेसीन उपर निर्भर कले। आउ किछ दिन गले लोक मैंने भाविले आमको मेसीन रोसे कर दिखता कोई दिखता कि आम भी हाथ में भी खातन एते सुस्तिया हेले आज्ञा पूरा रोगग्रस्त हो जाए, बेड रे पड़ जाए।
0: रखीचु जे एआई आमको नुआ नुआ चिंताधारा दबारे हेल्प करुचि, आमको इम्प्रोवाइज करुचि, ना आमको से सप्रेस करि दोचि, से विषय आपनको कोन मतलब?
1: नै नै, सेइटा त निश्चिंत भाबरे किछि मात्रा रे हेल्प करजि 50%। आपण देखन्तु एआई कैमरा सब लागुचि, जो माने चोरी डकैती राहजानी कले, एंटी सोशल काम कले, कि खसी जाइथिबे सेमान कैमरा रे धरा पड़ जाउछन्ति। आ गोटे जिनस आपण देखन्तु, गुगल जोटा बाहर सर्च करछन्ति आदर भी बेनिफिट अछि, सेतर भी डिमेरिट अछि। गोटे मु मझे देखुथिलि गोटे न्यूज रे, गोटे लोक जाइकि जमुना नदी उपरे ठिड़ा होइकि रूट उपर माने ये करथला कार रे, किंतु जाइकि खसी पइला नदी भितर को, किंतु रूट ठीक मिलुनि। आपण सब जहाँ सर्च करिवे सब भी ठीक सब समय रे आसुनि। आमे जेतबेले जमी जमार कारबार करुछु, आमे गुगल रे सर्च करछु, किए भी सब ठीक आसुनि, किसी भी रही डिमेरिट है, कारण मेसीन द्वारा कम आपणकर जोटाक आपणकर मान कौन आपणकर जोटाक रेडियो फेडियो जो सब चली जो आपणकर मानने स्पेस मध्यम सब हूँ से जिनसा सब ठीक चलिए ठीक नहीं। तेणु मो कह।

0: welcome sir back sathi tune question 100.4 akashwani fm rainbow katak tulsi tudak patman shochali chi dial in live chit chat am aji achi apan kar rainbow sathi subhashri aji apan kar sathi re au aji apan manan ko pai topic rakhi chi je aji roi jo ai duniya आम भितर थिबा क्रिएटिविटी पावर को रिप्लेस करुछि ना ताकु आउ टिके इम्प्रोवाइज करुछि आउ सी पावर को इंक्रीज करिबारे हेल्प करुछि कोन रहिछि एथिरे आपनकर मतामत चालंतु देखि नबा नेक्स्ट कॉलर किया हम सहित जुड़ी होबा को चाहौं छथि हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार के कोथले कोट कॉल करथिले
1: तुलेगा किरमरा ब्लॉक झासुआ जिल्ला रु दुलगोविंद मिश्र कहउची
0: स्वागत करछी आजिरा डालिन लाइव चैट चैट को प्रथम कोंतु केमथि अछंती
1: भलो अछि मैडम
0: आजी आ जहा टॉपिक रहिछि से टॉपिक उपर आपन कर कोन मतामत रहइबो
1: हां मैडम मो या टॉपिक भीतर त मोर प्रश्न मोर अछि उत्तर एरा कहि भी कि ता पूर्वरु मोटा खाली पत्रावाली मु चाहउ छी कि जे एबे मोर नंबर ता पास त रिंगला काहे कि नै उठाले
0: गीत भी सुनिबा तो गीत बाजुला कॉल रिसीव कर पालेनि किंतु अभिमान छाड़ंतु मु आपनकर वर्तमान कॉल रिसीव करिछि ना
1: ठीक
0: अछि कहंतु
1: माने एआई टा गुटे एमती अछि माने मु दीर्घ माने तीन मास एआई रे माने आकाशवाणी रो कोनसी भी माने जेंती कटक हेला कि संबलपुर हेला तार माने डायल नंबर ताकू मांगिली से सब बोले गलत नंबर ही दौला किंतु मोर छुआ रो जो माने से एबे मेट्रिक क्लास पढ़ुछी तार दि तीन टा प्रश्न ताकू पचारिली से तार सठिक उत्तर देला मु ताकू माने तार ट्यूशन मास्टर को भी माने देखेली जे ठीक अछि कहिले तो तार माने जेमती कि आमे एआई टा कोनसी भी व्यवहार करले तार चेक कबाड़ा नियाती जरूरी कि जे से जो उत्तर टा दउ जे सिरा ठीक ना भूल
0: आज्ञा सेति पई ही कहिले जे हम को क्रॉस चेक करबा नियाती दरकार
1: हां नियाती नियाती जरूरी मैडम सेटा काहे कि ना मु मु मते से नंबर दिए मु नंबर डायल करे तार बे से डायल करले से नंबर टा नी आपन जे टा नती भूल अछि नेटवर्क बाहर अच्छे मान उपलब्ध ना पुणी कहे ना ये नंबर भूल अच्छे से मत बाध्य लास्ट को कहले कि क्षमा करेंगे आम पाखे नंबर ना आप नंबर पाइले आमको बतेबे तो आम मान तार तार खराब भी अच्छी तार भल भी अच्छी तो जेहतु मोर छुआर मान कम भल भल मान रिजल्ट देसी तो से लगे यही मान भल अच्छी आम मान जो जीवन से बढ़ोतरी करी तार प्रभाव निश्चित भाव पड़ी
0: तो साथी मुझे सजेसन रस्त केवल आप नुह जमी आगुरी भी थे कही सारे जदि आम कि पाठ पढ़ा रिलेटेड किसी प्रश्न उत्तर पचारे कि किसी भी जरूरी काम जो कि प्रश्न उत्तर पचारे से जगह जो आंसर पाउचे से क्रॉस चेक कर दबा निहाती दरकार
1: ने नियाति मु सेटा मन मोर छुआ को बजा मु कोइली बाबू माने एइटा के दिले सब ठीक हबो ताकि जे गारंटी न निज हिसाब कर से आउ से बहुत कम यूज करे जतेल तार निहाती बहुत जदी जरूरी हबो ताले मते से कोइबो पापा टिके एटा टिके देखि दियो कोइ गेले मु देखि दिए
0: आज्ञा बहुत बहुत भल लागिला आपन को सहित कथा ही आपन को मतामत आपन हम सहित शेयर करिले हम सहित जोडी हेतबारु बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सती नेक्स्ट कॉल. हेलो
1: नमस्कार आज्ञा.
0: नमस्कार. सो संध्या किए कहते कौट कल करते
1: समित पंडा कहते तेलंगापंठ कटक
0: स्वागत करछि आजर डायल इन लाइव चिट चैट को. प्रथमे कहंतु केमिति अछंदि बहुत दिन परे अपन को सहित कथा होछि. म
1: आज्ञा वर्कलोड रहूछि तबरे ये वाले पीक टाइम
0: आज्ञा
1: तो समय होनी जेते बेले म टिके फ्री थाए
0: आज्ञा
1: आज हम सुने तो आज विशेषतला भल लागिला
0: आज्ञा
1: तो भाभी ली कथा हे दिबा दीपद
0: निहाती कहंतु ताले देरी नकरी कहंतु आजर टॉपिक उपर अपन को कोन मतामत रहइबो.
1: टॉपिक बाबद रे कहिया पूर्वरो निधाड़ी कहती तुम्हारी जेमिनी वाली फोटो बड़ी अच्छी लग रही थी पर अफसोस एआई सिर्फ चेहरा बदल सकती है चरित्र नहीं.
0: वाह बहुत सुंदर.
1: व्हाट इज एआई. प्रथमे हम जानिबा एआई कौन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता. ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौन मनुष्य याकु तयारी करिछि. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस. मनुष्य याकु बाहर करिछि, मनुष्य याकु डेवलप करिछि, मनुष्य याकु डिजाइन करिछि. तो से जगह रे क्रिएटिविटी आउ एआई सहाय्य रे क्रिएटिविटी आपण देखंतु. आमे आगे जेतेबेले वर्तमान समय रे आमे आपण पाको मेसेज पठाउछु व्हाट्सएप रे
0: आज्ञा.
1: आगुरु चिट्ठी रे पठाउथिलु तो चिट्ठी द्वारा कोन होतला ना कहार हस्ताक्षर केमिति आपण जेहेतु कार्यक्रम संचालन करुछंती आपण जानिपारथिले. किंतु वर्तमान समय एमिति समय रे आह्वान आसिला समस्ते कीबोर्ड रे लेखि चाल देले हस्ताक्षर समस्तंकर अति सुंदर. काहेकि ना ताहा जहा देउछो आमर टेक्नोलोजी द्वारा डिजाइन हेइछि डेवलप हेइछि आमे ता अनुसार आमे लेखिकी छाड़ देलु. किंतु एआई इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस. एटा कौन हेइछि ना एआई गोटे टूल्स ये कौन डेवलप कर इट्स एम्प्लीफाई ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इंटीग्रिटी. तेणु आम क्रिएटिविटी दुनिया रे हेल्प नहीं पारा साहय नहीं पारा. मुतीत अनेक थर कही आमर आगर थे भारत महामानव उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से गोटे प्रोग्राम भुवनेश्वर आसते कहते गूगल के गुरु हो पार गूगल सब आंसर दे पार आपण चटकिन तार किसी जानवाक चाहते कि भितर भी मनुष्य किसी तो बुद्धिमता अच्छी सी तो निजर ताकू तो मनुष्य तैयारी कर तेणुक आम कौन किसी आज मैजिक अच्छी कि आम जो एआई हूँ किसी मैजिक अच्छी कि आपको कौन करा कि ना किसी
0: कथा हो फोन लाइन टी कटी जाइछे साथी तबे आमे आपनठो आउ किछि सुनिबा पई आशा रखिथिलु. जदि पारुछंती निहाती ट्राई करंतु.

0: हेलो
1: मैडम।
0: हेलो किए कहते कौट कल कर नमस्कार स्वागत कर
1: नमस्कार आपन ए जो क्वेश्चन दाजी पजर ना
0: आज्ञा
1: ये विज्ञान।

साथी आज जो मैंने सहित जोड़ी ही थे से समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आउ जो साथी मैंने ट्राए करते कनेक्ट हाँ चेष्टा बहुत करते किसी जन कल लगिकी कटि जा किसी जन कल टोटाली ही लगी पारे से समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप ट्राए कर ठीक अच्छे आज ना नेक्स्ट को दिन आम सहित कनेक्ट हो पारे निहाती तेज ये शेष करवा आज डायल इन लाइव चिट चैट को ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: GST काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छी। बस, ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छी, जहां पूर्वरु 28% थिला। HS कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट्स सप्लायरक समस्या कम हेजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही कि जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती GST दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव

0: राज्यपालाय प्रतिवेदनं दास्यति। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अद्य नोएडाया सूरजपुरस्थितस्य लोहम इति समवायस्य भ्रमणम अकरोत्। अयम समवाय महत्वपूर्ण खनिनाम उन्नत सामग्रीणाम च उत्पादनम विदधाति। अत्रावसरे श्री वैष्णव अवोचत यत् लिथियम बैटरी स्थायी चुंबक इत्येतौ आधुनिक प्रौद्योगिक्यां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परिकल्पना वर्तते यत् एतेषां निर्माणं भारते स्यात्। एतेषां प्रौद्योगिक्यः विकासः स्वदेशस्तरे भवेत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अस्याः परिकल्पनायाः अनुरूपं लौहं नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: म्यांमारस्य राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य पंचदिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां संप्राप्तः। तेन बोधगया स्थितस्य विश्व प्रसिद्धस्य महाबोधि मंदिरस्य दर्शनं विहितम्। राष्ट्रपतिना तत्र बोधि वृक्षस्य अधः प्रार्थना अभिकृता। अत्रावसरे म्यांमारस्य राष्ट्रपतिना बकराऊर स्थिते ऐतिहासिके सुजाता मन्दिरे शिरं नत्वा बोधगया स्थितस्य बर्मी मठस्य यात्रा कृता। राष्ट्रपतिना सह वरिष्ठाधिकारिणः बौद्धप्रतिनिधयः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अपि अवर्तत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमण्डलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्राविट् आगामिषु चतुष्पञ्च दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अरब सागरे बंगालखात्यां लक्षद्वीपे कन्याकुमार्यां च प्राविट् अग्रे समेधते। ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य अष्ट जनपदेषु अद्य प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्ण सञ्चेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलता कारणेन जून मासस्य तृतीय दिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरल लक्षद्वीपतटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपनृद्विवेदी अवोचत् यत् भारतीय सशस्त्रबलानि उच्चस्तरीय सतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिन्दूर 2.0 इति सिन्दूराभियानस्य द्वितीय चरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणे नगरस्य खडकवासला स्थितायां राष्ट्रिय रक्षाकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तर प्रदातस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उवेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीय सैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 44th प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज़ ऑन एआई

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी।

0: हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: GST काउंसिल निजर 56तम बैठक में हेल्थ केयर द्रव्य को सस्ता करने द्वारा आम देशर बृहत जनसंख्या को एक आश्वासना मिली। भारत मधुमेह रोगी दैनिक जरूरी ग्लुकोमीटर एवं स्ट्रिप्स उपरे जीएसटी दर ह्रास कर दीजाई। डाक्तरी चश्मा उपरे जीएसटी ह्रास कर ब्रेस्ट कैंसर सहित आस्थमार उन्नत चिकित्सा केतक दरकारी औषध थर्मोमीटर डायग्नोस्टिक किट्स उपरे टैक्स दर ह्रास करा जाई छी।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घंटे समय वर्तमान संध्या 7:27 आ आरंभ हो जाए शो संध्या सर संध्या निज प्रिय जन मान को निजर गुड विशेष पठाई पारे जणे परिबे तांको तांको जदि बर्थडे रहिछि किबा एनिवर्सरी रहिछि तांको जणे परिबे गुड विशेस हमरे संध्या आसर सेगमेंट माध्यम रे तिमे केमती जणे मे मेसेज करबा पई निजर फोन रो मेसेज बॉक्स को जाई टाइप करंतु एफएमआरसी ठीक स्पेस दियंतु जहां को निजर मेसेज टि पठेबा पई चाहु जोंती

है तो हम क्या करें। वाह बहुत ही सुंदर। तेरे मैसेज टी कॉल छंती आवाज सेन रोहित सेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रो। तेरे साथी ये तीकरे मैसेज टी सॉरी नहीं आवरी मध्य मैसेज लिखी छंती जी आपनको उपस्थापन रे टिके टिके मजा कथा कहउ छंती सेटा भल लागुची जा हो साथी बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर फीडबैक पई। तबे लिखु छंती जे सबो आरजे माननको वेरी वेरी गुड इवनिंग। तबे गोटे इनविटेशन भी रही छे जे आ कहि छंती हम टाटा प्लांट को केबे बुलीबा को आसंतु निश्चित समय हेले निश्चित साथी बुलिया को जिबू। तेबे टुना भाई रमेश भाई उर्मिलापा समीर पंडा भाई मुन्ना भाई विजय भाई को वेरी वेरी गुड इवनिंग जणै देबे नमस्कार जणै देबे। साथी मु आपनकर प्रियजन मानको पाखरे आपनकर मेसेज टिकु गुड इवनिंग विश को गुड विश को पठेई दैछि आपन जमा भी वरिड हेबेनी। तेबे आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद आपन हम कार्यक्रम रे शामिल हेले निजर गुड विशेष समस्त सहित शेयर करले ता सहित आपन को इति सुंदर फीडबैक पाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।

ट्यून कर चुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सी दिल दा बहुत मन शो चली छी गीत रे मितरे आउ मु अछि आपन को साथ रे आपन कर रेनबो साथी शुभश्री आज हम कथा होतले ना से लुण विषय रे लुण केमती खाद्य रे न पड़ीले तार खाद्य रो टेस्ट केमती पूरा खराब हो जाय खराब कहि परिबानी किंतु टेस्टलेस हो जाय थाय आ लुण जदी अधिक हो जाय ताहले तो खाइबार स्वाद पूरा बदली जाए ना से खाइबाटा पूरा खराब हो जाय थाय आपण जिते समय दे जिते आराम से गोटे डिश प्रिपेयर करथांतु ना कांके यदि सेतिरे लुण पकेबा को ही भूली जाय छंदे ताहले से डिश पाटी रे दउ दउ ही टेस्टलेस फील हे थाय हुए ना किंतु जेतेबेले से डिश टी परफेक्ट ही थाय टेस्ट रे सेतेबेले कोन आपण को फील होई जे से सेतिरे लुण पड़ी छि ना नहीं बस इतिके जणा जाय जे जहा मसला मसली यूज होई छि से सब परफेक्ट अमाउंट परफेक्ट मेजरमेंट रे पड़ी छि से डिश रे हां ना लुण रो काम ही सेया से सबुठी जेतेबेले थाए सेतेबेले ताको केही जानि परंतनी केही महसूस ही कर परंतनी किंतु जेतेबेले ही से कोनोसी डिश रो गायब ही जाय ता कमीटा समस्त को खटका लगे ता एब्सेंस ता समस्त को बाधे समस्ते तापरी ताको भारी मिस करंती लुण भली अनेक व्यक्ति रही छंती जे कि आम लाइफ नामक डिश को टेस्टी करि परे बहुत सहाय्य करंती से भी ता प्रतिबदल रे बिना किछि डिमांड करी ठीक निजे चारिपटे आकी बुले देखंत तो निश्चय आपण को जीवन रे भी

0: আমরা পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লির।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে বিশাল শর্মা। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों

0: को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत

0: दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में

दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रेनबो एक्सप्रेस रे परवर्ती में सृष्टि करिसंती विजय कुमार दास एवं सस्मिता दास सौरी महासिंहपुर बहुग्राम कटक।

0: ସାଥୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରଗତି କୁଟୀର ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 12ରୁ, ଡମ୍ବରୁଧର ରଥ ଶର୍ମା ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 13ରୁ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନନା ନୂଆଗାଁରୁ। ସାଥୀ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साई

0: राज रंग की रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक
2: राती 11:05 मिनिट रो

हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज रे सुंदर सकाळ रे निसी तरफ रो आपण मनंकु शुभ सकाळ रे शुभेच्छा एवं शुभ अभिनंदन आज शुक्रवार ए शुक्रवार अवसर रे सकाळ सकाळ समस्त जे जो काम रे अछंती जे जो काम रो लिस्ट बनाई बा शेड्यूल तैयारी कर समस्त सब काम परिपूर्ण हो सफलता प्राप्ति हो ए कामना सहित आरंभ करिबा शुभ सकाळ पानी तो पानी से पुणी पैड़ पानी कि सुंदर कि मधुर कि अपूर्व स्वाद सतरे पैड़ पानी सतेज पैड़ पानी तनु मन को पुलकित करे एवं शांति प्रदान करे।

समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21, 22 और 23 तारीख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यहार सविशेष विवरणी पाई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 151

वेलकम बैक ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे निचे छे आपण को सहित सुंदर सकाळ रे आपण माने सुनु चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: आहा की सुंदर सते जीवन से पारे सकल सुख रे सुख भरी छि से पूरे
1: हे मंगलिया।

0: लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे एवे स्टार्ट हिजवर डेली लाइफ चिटचैट जो शो को आपण माने चाहि बसी थांती अपेक्षा करि बसी थांती किंतु टॉपिक

06712303153। कौन कहले टॉपिक जाने नहाते मो से भावुले आपण मैंने भावुवे टॉपिक जानी कि नहीं किंतु एपर्यंत टॉपिक आपण मैंने जानी नहाते मैंने कहली मुझे जानी लिस्टनर्स मैंने टॉपिक सुनिला मात्रे हठात कर निजर मत रखिबे आउ सुंदर भाव में मत रखिबे कारण आपण मते अभ्यस्त हो गले टेलीफोन मध्यम सहित सीधा सड़क कथापी आउ टॉपिक आगुरु अनाउंसमेंट करने को पड़ना तेज जहा हूँ आज गोटे नियारा टॉपिक रही गोटे एक्स्ट्रा गोटे यूनिक टॉपिक रही टॉपिक टी जान लें जितक खुशी हे से आश्चर्य रे टॉपिक टी कह तो केमती इच्छा केबे केमिति इच्छा हेले ओडिया चलचित्र रो पुरुणा मेलोडियस गीत सुनिबा पई तेबे को आर्टिस्ट कर को गीत सुनिबा पई आपनकर इच्छा हुए भले लागे ए संपर्क रे जे द्विपद कथा कहबे आ को आर्टिस्ट कर को गीत सुनिबा को आपन भल लागे आ संगे संगे मनटे हल्का लागे आनंद रे पुरि जाए।

0: जने कलर आम सहित जोड़ी हे गलरी देखिवा से किए। हेलो हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते ओके आपण आज फर्स्ट कलर जोड़ी होती आम सहित आपण को स्वागत करुचि।
1: थैंक यू मैडम।
0: तेबे कौन कहते इच्छा हेले ओडिया फिल्म रो पुरुणा मेलोडियस गीत सुनिबा पे को गीत सुनंती अभिनय कथा कहले उदंडी सीता फिल्म सब गीत भल लगे ना ओके बेले बेले इच्छा हेले शुणती गीत
1: आज्ञा मो मोबाइल तो शुणे रेडियो तो पुणा पुणा गीत गाँव रेडियो तो सदा लगी था
0: रेडियो बाजु थाए ओके सकाळ कोन खिया पिया हेछि
1: सकाळ खिया हेनि आराम से झियार पर ड्यूटी जेबे त से तका पई जळेखा तयार करि से बाहर चला परे
0: तापर जाई अपन खाइबे
1: पूजा कसले खाइबे
0: ओ से कथा अच्छे आपण तेज जहा हो काम सारे आप खाइबे प्रत्येक घरे घरे सिचुएशन हुए तेज आप उदंडी सीता फिल्म सब गीत शुणापे भल पाती बहुत भल लगे आप सहित कथा हे फर्स्ट कलर हिसाब से जोड़ी हेले आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सतरे ओडिया फिल्म रो पुरुणा गीत कहिले मेलोडियस गीत कहिले रोमट आंकुर उठे गोटे अलग भावना को आमे मैंने क्विकली अति शीघ्र चली जाऊ आ मनर भावना संपूर्ण भाव बदली जाए मनर जिते दुख थाऊ विषादग्रस्त मन हो सांगे सांगे मन हल्का लगे फुल्का लगे आउ आनंद मस्कुल हो जाए देखा आज जन कलर आम सहित जोड़ी गले किए कौट कौन हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक
1: हेलो मैम नमस्कार जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ नमस्कार के कहते
1: मैम मु प्रफुल्ल प्रधान कहि कुआरपाल माणिया मंदिर
0: आपण को स्वागत जनाउछि कोन कहिबे आज रो टॉपिक संपर्क रे
1: मैम मो मनोनीत प्रश्न आज थरु मु बहुत आनंदित आपण को मध्य बहुत धन्यवाद
0: अच्छा आपण ये भावुतले मन

0: आउ जने कलर हम सहित जोड़ी हेलेनी देखिबा तंको हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक
1: भुवनेश्वर कहुथिली कृपा सिंधु कवि
0: आपनको स्वागत छणोची को गीत आपनको भल लागे से गीत सहित आपनकर संपर्क आउ से गीत काहे की भल लागे
1: मते जो ओटे प्रसन्नंदर गीत ओटे अछि महेशता संगरे छुनकी एतो जालरे पड़ीबो नाहीती
0: अच्छा
1: पूरा मन रोन बेले बेले भारी गुण गुण भीतर चली आसे पसंद
0: तेबे काहे कि से गीत भल लगे काहे कि सेमती गोटे सुंदर भावना भितरे आपण गुणगुणी फोंती भावंती कोन रही छि से गीत पछर रहस्य
1: आमे विजय मांती पंद्रह को पूरा पाखरे हम साइड घर रहतिले
0: अच्छा अच्छा
1: पटना हम थिलु त क्वार्टर से त से हमर साइड घर रहतिले संग घर गुम जाय त सर कथा त जे थार भितरंती छै जी से लेक्चर करते जो उत्कल संगीत महाविद्यालय गोटे दीटा इंट्रोड्यूस
0: अच्छा से गीत आपन को मन को पूरा बांधी नहीं ची आउ गीत सुनिले आपन को भल लगे ना कि ओके आपण ओडिया संगीतर एते सब गीत जाणी शुणु आज आमको कहले तार रहस्य टी कौन आज आमको कहीदेले आपन को बहुत बहुत धन्यवाद
1: नमस्कार
0: नमस्कार

उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु मेसेज कर चाहती अरुंधति फिल्म गोटे सुंदर गीत लता मंगेशकर गई गीत बहुत पॉपुलर गीत समस्त प्राय मन थी गीत आज मु श्रावणी शुणी दौर आपण पसंद गीत आपक्रम को बहुत प्रशंसा करेगुड़ कथ लिखी कथगुड़ाक पढ़ा पूर्व मुझे गीत शुणी कारण अनेक श्रोता मैंने सहित एसएमएस मध्यम सामिल होती सुंदर सुंदर गीत फरमाइश कर तेज आपको मोटामोटी कार्यक्रम बहुत भल लगी लिखी आपण तरफ बहुत बहुत धन्यवाद।

सिंगर अनुपम राय केवल जे सिंगर थिले ता नुहे बरंग सिंगर हेबा सहित से जने कंपोजर मध्य एवं लिरिसिस्ट मध्य तो तांका कंपोजिशन रे पिकु चलचित्रर सबु गीत गुडीक कंपोज करा जायतिला एवं ता सहित पिकु चलचित्रर सुंदर सुंदर गीत तांका कंठ रे मध्य आपण सुनिले आउ गुडी गीत रहिछि पिकु चलचित्र रे जहार कंपोजिशन से करिछन्ती वर्तमान से गीतटिको आपण को पाई प्ले करछि एन्जॉय करंतु

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता बंधु आपण माने सुनुछन्थि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल से दिल तक कोयल आपण मानक साथी अछि किछि पुरणा हिंदी चलचित्रर गीत आपण माने सुनुछन्थि आजर परवर्ती गीतटी बहुत सुंदर आ बहुत सुपर हिट गीतटी शैलेंद्र सिंह को कंठरे सुनि परिबे बॉबी चलचित्ररु मिस

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

चिठीटिए सतरी मनर अनेक कथाको कहिदेइपारे अति सहजरे किछि मात्र शब्द आ मनर कथा अति सुंदर भावरे कहिदेइपारे ए चिठी सेथिपाई त चिठी सबुबेले किछि शब्दर समाहार नुहे बरं गोटी हृदयर निरव भाषा बोली कहा जाए जेउठारे लुचि रही थाए अनेक अकुहा कथा अनेक स्मृति आ असीम भल पाइबा पुरुणा चिठीरे पीतवर्ण कागजरे आज भी महकी जाए से स्नेहर सुगंध जो पुरुणा चिठी आपण खाता बही डायरी भितर आपण साइती रखिछंती थरे से चिठी को खोलंतु आ तार स्मृति रे हजि जानतु

0: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहन्तु।
1: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाड़ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांती लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी हेबा, अचेत हेबा किंबा बात मारिबा।
0: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुड़िक हेउछि सकाळे किंबा उपर बेला खरा कम थिबा बेले बाहर को जांतु। बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु। हालुका रंगर ढिला पोशाक, छत्ता ओ जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही, अधिक दूर चालंतु नाही, मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु।
1: अंशुघातर प्रतिकार गुड़िक हेउछि रोगी को खोला ओ थंडा जगह को नेई ओआरएस किंबा चीनी लुण सर्बत अथवा साधा पानी पियंतु। पोशाक गुड़िक जथा संभव खोली दियंतु, मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु। रोगी को पंखा, कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु। अवस्थारे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
0: वयस्क तथा अस्वस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिलांक पई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
1: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।

समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारीख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यार सविशेष विवरणी पाई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 151 00 रे जोगाजोग करंतु।

आमर संस्कृति आमर ए संस्कृति आमको सिखे थाए भल पाइबा सम्मान सहयोग आ मानवतार पाठ आज मो देश कार्यक्रम मो भारतीय संस्कृति आ मोर